एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार कीती देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारिया देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घुमण लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घुमदी देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घुम रहे है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुटदे ने ता नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ

लभते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े हुए घोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने कहा बच्चियो घोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां किस तरह दे घोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नूं भी दरख्त दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नूं आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शिद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नूं पता लगा। उन्हें आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदों पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही नहीं जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया है उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नूं सुरत विच लियांदा। जिहड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नूं दब दिता गया। त्रेते विच ए अमृत इस तरह प्राप्त कीता। ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नूं अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दी, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ओ कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब झुब्बी मारी पानी विच पहुंच गए सच।

कीर्तन करन वाला तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करन वाला पर मैं वेला सी कारे कहंदे ने काम

गुरु रामदास, गुरु अर्जुन साहब, गुरु हर गोविंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अते दसवें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदू होए, 11वें दिन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं एक गल याद कराई।

सुत कंदे निपुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा पहले जन्म दा नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलान वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं देया कहो जिया मैं पंथ चलावां मैं अपना सुत तो ही निवाजा पंथ प्रचुर कर बे को साजा अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती गुरु साहिबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहिब जी पुछदे ने ऐ सूरत तू कौन है उस सूरत बोली मैं खालसा गुरु साहिब जी पुछदे ने तू कित्थों आई है उस सूरत बोली मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो जो चाहिदा सी ओ मिल गया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए पर सोचन लगे ए सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा पंडता साधुआ सन्यासिया किन्नू दया ए सूरत क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नूं चंगी तरह साफ करके लजाने जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा ते अमृत

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे है। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां, एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहा है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले। पहरेदार चला गया, दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहा है, अखां बंद ने, हाथ जोड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने, ते नाले कह रहा है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उस सिख उठिया, अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदू दरबार विच दाखल होन लगा, इथे भी एक पहरेदार खलोता सी, उसने कहा, एक काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ये दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया, सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे आ, अरदासां करदे आ, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरणा ते रख दिया।

तीन दिन हो गए नी तेन रोंदियां सानू पता है सिखा साड़े नाल बड़ा प्यार करना है।

बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु दा कौतुक है। कहन लगे सिखा साडे वास्ते बेटा की ल्यांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आप दे मैं सुनियारा वा। हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आप दे वड़े मसंद चेतो नूं ओदों दिता सी जद वो काबल गया सी। दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लेके आया सा, वो कंगन मैं चेतू मसंद नूं दे दिता क्योंकि चेतू ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नूं दित्ती सन ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह ए झूठ बोलदा है, ए कंगाल कंगन कित्थों दे सकदा है।

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी।

जदू दोबारा गया मैनू एक सिर दी लोड़ है। हर पासे सहम छा गया ते एक ही हो गया। गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगन लग पए। तीसरी वारी सिर मंगया तां भाई दया राम उठे हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज मेरा सिर हाजर है। दया राम नू बाहु फड़िया तंबू च लै गए कृपान मारी सिर वड़िया। लहू नाल भरी हुई कृपान लैके जदू साहब जी वापस आए लहू भरी कृपान देख के जड़े बैठे सन ओ सारे कंब गए। जड़े दूर दूर बैठे सन ओ उठ उठ के भजन

अद्धे तो ज्यादा पंडाल खाली हो चुका सी। ते जड़े दूर दूर भज गए सन, भजे भी जा रहे ने, पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने, कोई फड़न ते नहीं आ रहे। पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए। जड़े बैठे सन प्यारो भी करते, पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते। बड़ी देर हो गई, बैठे उड़ीकते पे ने। हुण गुरु साहब जी उस तंबू विचों बाहर निकले, कृपान म्यान विच है, चेहरे ते हुण रौनक प्यार है। ਉਹ ਪੰਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ।

पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने, जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए। सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए।

कि गुरु हमेशा गुरु रह सकता है कि चेला हमेशा चेला कहन लगे नहीं। जदो खालसा साजे फिर एक कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच।

एक विचार है कि गुरु साहबा ने उन पंजा नू नाम दिते दया राम नू दया सिंह सिंह नाम उदू दिता जदू ओ ना अमृत छके ते जे कोई बगैर अमृत छके सिख परिवार विच जन्म लै के अपने नाम दे नाल सिंह लफज लांदा है ओ सिंह लफज माता पिता दा दिता हो सकदा है गुरु वालों सिंह लफज उदू मिलेगा जदू आपा अमृत छका गुरु ने किन्नी कृपा की थी? ना समुन्द्र रिड़कन की लोड़ है ना अवतार बनन की गुरु नानक वर्गा कोई हो नहीं सकता कि जिन्हों सचखंड अकाल पुरख बुला के अमृत प्यावे किन्नी कृपा की थी? रहत बैत वाले पांच सिंघा को जाओ बेनती करो ओ अमृत तैयार करके पाई तुहानू छका देंगे तो जिन्हें अमृत नहीं छके सिख परिवार विच जन्म लैके ओदा जीवन किसे लेखे नहीं अमृत जिहड़ा छक लैंदा ओदी कोई जात नहीं अगर एक चमार भी अमृत छक लवे रहत विच रवे तो गुरु साहब जी कहंदे ने ओ फिर चमार नहीं।

हर घर ए हो पहुंचा सदरे नित पवन ए शब्दां तां नित ही पै रहियां हन असी सुनियां अनसुनियां कर देंदे हां जदों कोई मनुख इस संसार तो जा रहा होंदा है कोई अर्थी जा रही होंदी है ओ सानू चेता करा रहा होंदा है ऐ मनुख एक दिन तेरे ते भी ऐसा आएगा वो भी सदरे दे रहे दस रहे जदों मनुख सौ जांदा है ना रात नू ए मौत विखाली दे जांदी है हजूर ने इस मौत नू नित परलों किया कि हर मनुख ते नित परलों आउंदी है वो केड़ी आउंदी है जदों असी सौ जांदे हां तां मौत विखाली दे जांदी है दस जांदी है ऐ मनुख एक दिन सौवन होएगो लांबे गोड पसार एक दिन तू ऐसा सवेगा कि कोई तैनू उठाल ना सकेगा इसे लई सतपुरश कहंदे हन जदों सौ के उठिए तां इशनान करो भाई शरीर दी पवित्रता लई क्योंकि मौत भी खाली दे जांदी है ओ भी मौत जो नित परले है ए नींद है ते जदों श्वासां दी गंढ खुल जांदी है इस नूं नमित परलों के है कि जदों श्वास समाप्त हो जान तां मनुख अगला कदम नहीं पुट सकदा उत्थे ही मिट्टी दी ढेरी हो जांदा है उच्चारण करो श्री घर घर ए हो पहुंचा सदड़े नित पवन घर घर ए पहुंच है सदड़े पै रहे हन जिवें बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले क्या करते सन भाई ए सदड़े गुरमुखां नूं अमृत वेले भी पैंदे हन उठ भाई गुरु के लाल ए मनुच्छा जन्म भी तेरा अमृत वेला है ते अमृत वेले उठ के इशनान कर सचखंड दे

धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच एक दात मांग रहे थे। हे वाहेगुरु, मेरे ते कृपा कर, मैनू नाम दी दात बख्श, क्योंकि नाम तो बिना होर जितने भी जीव दे कम हन कर्म हन ये त्रिग हन, ये किसे कम नहीं, क्योंकि नाम तो बिना जो पहनदा है खाउंदा है त्रिगकार है। सौ वेरा किसे नू लानत देइए, एक वेरा त्रिगकार कह देइए तो बराबर होंगी। आख्या बिना नाम तो बिना सिमरन तो पदार्थ जेड़ा खा रहा है, जो कूकर जूठन में पाए, जिस तरह जूठा जो लोग सुट देंदे हन तां कूकर खांदे हन, आख्या ओ मनुष्य भी उसे तरह ही खा रहा है, झूठ खा रहा है जे ओदे रसना ते सिमरन नहीं आया, अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम नहीं जपया। इसलिए नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए, मिल मेरे

शरीर दे नाल चोज कर दें जो मृतक मिथ्या सिंगा ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनु कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है।

तेरे जितने रस भोग तुम सुखा वल भजदे चाहुंदे कि मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकदी है नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकदा इसलिए

नाम ना जपन वालियां ने कितनी ताड़ना कीती, कितनियां त्रिग कारां पाईयां, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग कुटुंब शरीर सहत आख्या ए त्रिगकार उसनू ही नहीं उदे कुटुंब नू ही है जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा। ते फिर जिवें बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले फरमाया करदे सन, भाई जदों असी परमेश्वर दा नाम भुल जांदे हां तां साडियां आवाजां दुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, सानू दुख आके घेरदे हन। फिर बंदा विलपदा कुरलाउंदा, कहिंदा पता नहीं रब ने की कहर दहा दित्ता, भाई तू उहदे उपकारां नू चेते रखदा तां इह दुख तैनू कदे ना वापरदे। आप क्या करदे सन महापुरख के जदों असी अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन करदे हां उहदा शुकराना करदे हां तां साडियां आवाजां सुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, जेड़े सुख चित चेते भी नहीं ना होंदे ओह भी मिल जांदे हन। ओह किहदी कृपा, भाई तू शुकराना कर, तू मालक दा कम कर, मालक तेरे सवारी जाएगा। ते जे तू अमोलक स्वास प्राप्त करके नहीं जपदा ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਟ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਲਾਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਘਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਨੀ ਦੇਹ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ, ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੂਵੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ महापुरख वचन सुनाया करते सन। बाबा जी कहन लगे एक बिरद शरीर त्यागन लगा ते उदा सारा परिवार कठा होके बेनती करन लगा, बाबा कुछ जांदियां जांदियां सानू सुमति दे जा, मत दे जा। ता ए बिरद बाबा कहन लगा, भाई मैं अपने जीवन विच तुहानू करोड़ां ही कमा के दिते हन ते हुण मेरे स्वास समाप्त हन, कुछ रुपए खर्च करके जे स्वास ले आवो तो मैं तुहानू कोई सुमति दे देंदा। आख्या बाबा ए तक किसे भी कीमत तो नहीं मिल सकदे। और सच है प्यारी सत संगत, जे सारे जीवन दी पूंजी भी एक पलड़े ते रख दईए ते दूजे पासे एक स्वास दी भी कीमत नहीं असी दे सकते। ते जिस वाहिगुरु ने सानू अनगिनत अमोलक स्वास दिते हैं क्यों ना उदा सिमरन करिए, क्यों ना उदे चरणा विचों सिमरन दी दात मंगिए, जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह मंग रहे हैं, मिल मेरे गोविंद।

गुरु पातशाह ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर गुरु दी पूजा दसी है। गुरु दी पूजा किवें करनी है, इसे तरह का ख्याल भगत कबीर जी देंदे हुए सानू एक गल समझांदे ने। कहिंदे ने, हे मनुख, हे इंसान, पूजा किवें करनी है। किसे ने कह दिता तीर्थ स्नान इयो पूजा है। हुन भगत जी इस गल नू स्पष्ट करदे हुए उपदेश साडे तक पहुंचांदे हुए कहिंदे ने, अंतर मैल जे तीर्थ नावै, अंदर तेरे मैल भरी हुई है, अंदर तेरे गुनाह कठे कीते हुए ने, अंदर तेरे अवगण ही अवगण हन। भगत जी कहते ने, जे तू तीर्थ स्नान करन भी चला जाए तू तीर्थ नू भी गंदा करके रख देवेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतना गंद है, तेरे अंदर इतनी मैल है। भगत जी कहते ने, वाकई लोगों ने अपनी मैल धो धो के तीर्थ नू भी गंदिया कर दिता है, मैला कर दिता है। पर इत्थे हुण भगत जी कहते ने, तीर्थ केड़ा है ते गुरु की पूजा की है। अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, वह बैकुंठ नू नहीं जा सकता, ओनू कदी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, जे तीर्थ स्नान करन गया भी अपने अंदर दी उन्ने मैल नू नहीं त्याग गया, अवगणा नू नहीं त्याग गया, गुनाह नहीं त्यागे। कहिंदे ने, कोई फायदा नहीं तीर्थ यात्रा जाण दा भी।

सेवा, कहते ने सच्चा इशनान गुरु की सेवा है, सच्ची पूजा गुरु की सेवा है। हुण गुरु घर आके तुसी कोई भी सेवा चुन लो, कहते ने ये सेवा ही तेनू पार लै जाएगी। हां जे तू कहना कि इशनान करन दे नाल ही तन ते मन की मैल निकलती है, पाप धुपदे ने, भगत जी ने एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिता है, कहते ने

सारा दिन न रहन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा कहे कबीर नर तिसे त्यावो बावरे आ संसारा। हे नर उस मालिक नु त्या, उस मालिक दी पूजा कर, तू ते संसार दी तरह एवी बौरा होया है, पागल शुदाई मेंटल होया होया है, इसलिए आ उस मालिक नु त्या जिस ते त्याउन दे नाल तेरी पूजा सफली हो सकती है। किदे नाल तू पूजा करनी चाहना है, इस मन नाल? शैब कहते ने भी तेरा नहीं, इस तन नाल ये भी तेरा नहीं है, इस तन नाल ये भी तेरा नहीं है। आज इंसान नु मनुख नु हंकार ही ऐसे गल है, कहने तन मेरा, मन मेरा, तन मेरा, हे परमात्मा तेरा की है। ध्यान देना मेरी गल वल, हे परमात्मा तेरा की है। पर इत साहब कहते ने हे मनुख, हे इंसान, सब कुछ तो है ही परमात्मा दा है, तू कि पूजा कर रहे हैं, तेरी पूजा किवें हो सकती है? क्योंकि सब कुछ तो दिता परमात्मा दा है। हुण ख्याल करना, जे मनुख नू तनना मिलदा ते मनना हुंदा, जे तन ते मनना हुंदा तन कदी भी ना हुंदा। परमात्मा ने तन दिता है ते असी तन कमाया है, जे परमात्मा तन ही ना देंदा तन कित्थों हुंदा? इसलिए साहिबां ने बाणी विच एक गल कह दित्ती सी, तन मन तन सब सौंप गुरु। भाई ये गुरु नू दे दे, जदों ये गुरु नू दे देवेंगा फिर हुक्म मन्नीए पाईए। जदों गुरु दे हुक्म नू मन्नेगा फिर तू परमात्मा नू पा सकने, फिर ओदी पूजा कर सकने, इस तो बिना पूजा नहीं हो सकती। इसलिए ख्याल बड़ा सुंदर है।

बिन गुर बचन जो मनना। जो गुरु दे बचन तो बिना चलता है, असी कहने ते हां कि हे गुरु साहब जो तुसी कहो उसी करन नू तैयार हां, पर खिमा करना असी करदे कोई नहीं। असी ओही कुछ करदे हां जो साडा मन मनदा है, जो साडी मत कहिंदी है। जिवें असी चलना चाहने हां, अगर गुरु दे हुक्म नाल चलीए ते खिमा करना अज दुख तकलीफ कदी भी ना होवे। ये दुख तकलीफ क्यों है? क्योंकि असी गुरु दा हुक्म नहीं मनदे, गुरु दा बचन नहीं मनदे। बिन गुर बचन जो मनना ऊरा परथाओं, कहते तुझ जी एक वसीला है। जे मनुख तू कर सके ते जिना मनुख कर लवे ओदे हुक्म रजा विच आ जाए, फिर कहते ओदी पूजा परवान हो जाती है।

हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनो हरि दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावै जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है पर कहिंदे ने दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर देखन

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा दे फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जो मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा वह पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा, लोगों समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहना नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहे हैं। कई लोग पगटावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है पगटावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो तो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तू तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन करम वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

जो बुलावे तुम बोले स्वामी, जो बुलावे तुम बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी, तन गुरु नानक देव जीओ महाराज, गुरु नानक पद पंकज वंदन, गुरु नानक पद पंकज वंदन, सिमरो अंगद दुख नकंदन, अमरदास गुरु।

तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह वसाला तरों तरा तरपन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जामै अमृत नाम है ज्ञान भक्त वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग गुर के शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी।

0: gözümde. ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, सृष्टि का करता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करते हैं। असी लोग ऐ सारिया रूहां सारिया आत्मावां परमात्मा तो विछड़िया हुई हैं। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लख जून दे विच परम दे भटकते फिरते हाँ। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतते फिरते हां। अनेक तरह के दुखां सुखां विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, वो सारे कर्मा बंधना तो रहत हो गए। वो लो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिवजी

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हू देवत्या दे सर्वोत्तम मने गए हैं। जा रहे हैं किसी जंगल के रास्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूड़ चक चक के मत्थे ना ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती से नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हों लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पूछती है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ

महापुरुषां दे जीवन नू कोई सास उस दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असी अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सास संगत जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सास संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सास संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते सास संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं सास संगत सुनाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी सास संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओह डेरे दे विच होके जांदे मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी विरध अवस्था विच पहुंचे हुए सन, परंतु एक दिन उन्होंने यह कहना कीता कि भाई गुरमुख सिंह अज साडे कोल टाइम नहीं है, अज असीं जल्दी जाना है, साडे कोल बड़ा थोड़ा वक्त है, असीं जल्दी जाना है, जल पानी छकन दा चाह पानी छकन दा सानू ना मजबूर ना करो, साडे कोल टाइम नहीं है, गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। ते गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना कीता, भाई गुरमुख सिंह जी साडे कोल टाइम तां नहीं है, परंतु असीं चाहुंदे हां कि असीं बाबा हरदित सिंह उन्हां दे इस ते असीं नमस्कार कर लईए, एक बारी गुरु साहिब नूं मत्था टेक लईए। संत गुरमुख सिंह जी हथ जोड़ के कहिंदे ने जिवें आप जी दी मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तों उतरे, महापुरशां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असीं लोक मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, भाई हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए, ते बहुतिआं ने तां मत्था लाया भी नहीं, जे किसे ने लाया तां थोड़ा जिहा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। 5 मिंट निकल गए, सारे देख रहे हैं, 10 मिंट निकल गए, 15 मिंट निकल गए, 20 मिंट निकल गए, 25 मिंट निकल गए, बोलो सतनाम, इतने मिंट नमस्कार, इन्नी लम्मी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी, ते साध संगत संत गुरमुख सिंह उन्होंने कहिंदे असीं सोचदे हां भाई 25 मिंट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहिंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नूं कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए, बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहिंदे महाराज जी मैं आपदी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिंट का फिर टाइम निकल गया, बोलो सतनाम। संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच एक ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहिंदे पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले दा तुसी कहिंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असीं बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन दा भी टाइम नहीं, बैठन दा टाइम नहीं, नाले तुसी मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिंट मत्था टेकिया, 20 मिंट 25 मिंट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिंट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है, बोलो सतनाम। भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर दा भजन होया है, असी तां अपने आप नूं नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी, बोलो सतनाम। जिवें बैटरी डाउन हो जांदी है कम करदी करदी,
ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਨ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਾਰਵਤੀ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਧੂੜ ਚੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हों के पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ए सी गुरमुख की कठाली विच ढालिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो
1: सतनाम।
0: साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्होंने बड़ा प्यार करते सन। गुरु नानक साहब जाके साधुओं को बैठा करते, भाई फकीर को बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी साध आए साधुओं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर साध संदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी काम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा है, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया। वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही सिक्ष्या दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उहनां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है। जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रसादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया पंजां प्यारियां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजां प्यारे ने नाम दी दात दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनूं इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डणा। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजू कच्चे कोठे दे विच बैठे, 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन लत्तां भी साध संगत कमजोर हो गई, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुन पिता जी सोचते हैं की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालके नूं अपनी चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: इस बालके नूं अपनी चरनी ला लो। बाबा हरजीत सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई, इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालके च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ए बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर ए लाइन बड़ी औखी है, ए फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहण कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशां ने कहना कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ए बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बाल क्या, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतिया। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया है, कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सत्संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सत्संग कीड़ियां दे पौन ते सुट देंदे, सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सात संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहंदे। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरू।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सात संग लेल दे विच सात संगत पा के गोले चलाउंदे, सात संग बाबा जस्सा सिंह दे मत्थे दे विच सात संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सात संग तुफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरू।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट कर रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने, इस करके सी नी। सात संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म,
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली हो बना।

हमारी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जय बा एक प्रभु, जय बा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाहे। जय बा एक कवन गुण कहिए, तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। कवन गुण कहिए जेबा एक, तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम, मेरी मत थोरी राम। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, मत थोरी तू समरथ वड़ा, वड्डी हूं वड्डा।

एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह। सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक कौ हर बख्श ले हो हर तुटे मेल मिला। हर कृपा कर।

कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उसे भी ही जीवन की यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किते भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधना है, असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब हैं, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बीइंग ए सिख सक्सेस नु गुरु बाबा जी चो ही समझना है ना, कि गुरु साहब सक्सेस किसनु आखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु नानक देव जी महाराज की निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन की यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ के में पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो के में मिलता है, ये नहीं कि इसनू मैं तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख के में मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटना हां, व्हाट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच है। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जो पूरिया नहीं होंदिया तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जो मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आख दे जीना नहीं आता, वट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डिवेलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आख दे जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान के रोगों का इलाज कर ली, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उनका इलाज

राजे, इको ऐसे राजे जो 300 साल पहलो भी तक ते बैठे सन ते आज भी बैठे हैं। इको ही राजे जिन्हां उत्ते 300 साल पहलो भी शतर चल रहे सन ते आज भी चल रहे हैं। ओ राजे हन, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

देवते ते शहीद सिंह जदों भी तेरा समा पूरा होगा ओ लियाणगे ते मेरे को नहीं लियाणगे तू गुरु नानक दे दरबार जाएगी सदीका को सतनाम ये गलती ना तेनु इत्थे ले आए ने मैनू कोई सेवा होवे दस मैं शरीर विच तेनु वापस भेजना है ये सच मैं सोची पै गया धर्म राज भी एक महापुरुषा दे लांगरी दी माता के हाथ जोड़दा होगा पढ़ जो कई बैठे होंगे कट्टड़ एक सुनाता।

गुरनैन बैन कुल गुरनरो गुरु सत कव नल कहे गुरु सत कव नल कहे जिन गुरु न देखियो न कियो।